नफ्स की कंडीशन को पहचाने। अगर हर आदमी अपने नफ्स की सलाह कर लेगा तो माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये जो नफ्स की कंडीशन होती है कि नफ्स अच्छा है, नफ्स बुरा है, नफ्स पाको पाकीज़ा है, नफ्स गंदा, ये कंडीशन ये तय करती है कि नफ्स दीनदार है कि नहीं है, नफ्स साहिब तकवा है कि नहीं है। ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं ये इसी से तय होती हैं। यानी इंसान का मुत्तकी होना इसका मतलब ये है कि नफ्स में तकवा, इंसान का ख़राब होना यानी नफ्स ख़राब है।

ये तारीख इंसानियत दुनिया का एक बहुत बड़ा मोड़ है कि जहां पे ईरान और वेटिकन साथ में बैठे हैं और इस पे डिस्कस करें कि दुनिया में इंसाफ कैसे हो। अभी तक तो अमेरिका जिम्मेदारी लिया था ना कि भाई इंसाफ के जिम्मेदार हम हर जगह इंसाफ करेंगे, और ये झूठ बोल बोल के ये झूठ को पहचानने की कोशिश करें, ये हर लेवल पे बोला जाता है ना। तारीख इस्लाम में कितने ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो अव्वल दर्जे के बेदीन थे, लेकिन लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे कि हम ही तो दीनदार हैं, दीन का परचम तो हमारे ही हाथ में। हत्ता मौलाए कायनात के मुकाबले में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। तो ये झूठे परचम लेने वालों को पहचानने की सलाहियत भी हमारे अंदर होनी चाहिए, और इतनी हिम्मत हो कि जब हकीकत खुल के सामने आए तो हम गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। आज ये चीज़ खुल रही है, अमेरिका की हकीकत लोगों पे सामने आ रही है। अफ्रीका से आवाज़ उठती, अफ्रीका के हालात आपको मालूम है कि किस तरीके से अमेरिका उनका इस्तेहसाल करता रहा, उनके जो मनाबे हैं उन चीज़ों को, मादन है उनको लेता रहा, बहुत कुछ अफ्रीकियों के साथ मजालिम हुआ। कि ईरानी, उन्होंने ईरानी कौम के नाम पैगाम दिया कि ग़ुलामी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, ये इंसाफ की बारिश है कि जो बरस रही है। ईरान दुनिया में अदल व इंसाफ की निशानी और उम्मीद दरवाके बन चुका है, लोगों को ईरान से उम्मीद हो गई है कि हमको अगर अदल व इंसाफ। हमने इससे पहले एक बात अर्ज की थी कि जंग से पहले अमेरिका ने जिस जगह पे ईरान को खड़ा किया था, आज ईरान ने लाके उसी जगह पे अमेरिका को खड़ा कर दिया है ना। हम ईरान तन्हा था, लोग सपोर्ट करने वाले नहीं थे, लोग उसको गलत समझ, बहुत सारी चीज़ें थी। आज हकीकत खुल गई तो ईरान मकबूल हो गया और अमेरिका तन्हा हो गया है ना, चूंकि हकीकत यही थी, सामने आ गई। ठीक इसी तरीके से जंग से पहले लोग समझते थे कि अमेरिका अदल व इंसाफ का मरकज़ है, महवर है, सेंटर है, फलां है फलां। आज जब हकीकत सामने आई तो लोग समझ गए कि जुल्म का मरकज़ है अमेरिका और इसराइल। अदल व इंसाफ अगर कहीं से मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ईरान से मिल सकता है, लिहाजा लोगों को ईरान से अदल व इंसाफ की उम्मीद। और ये दुनिया की बुनियादी चीज़ों में से, कुरान मजीद को पढ़ें, अंबिया का बुनियादी मिशन ये है, अव्वल तो सबसे पहले तौहीद है, उसके असरात में यही है कि मसलन दुनिया को अदल व इंसाफ से भर दें, दुनिया में अदल कायम करें, हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी तबके से हो, चाहे वो किसी मजहब व मिल्लत से हो, किसी मुल्क से, किसी के हक को जाया करने का किसी को कोई अख्तियार नहीं। ये पॉलिसी अमेरिका और इसराइल के पास नहीं थी, ये पॉलिसी ईरान के पास है, और इत्तेफाकन यही पॉलिसी है, और यही पॉलिसी उसकी कामयाबी का सबब भी है। दुनिया के सारे जालिमीन, चाहे वो छोटे पैमाने पर जुल्म करें या बड़े पैमाने पर जुल्म करें, इस बात को समझ लें कि उनका झूठ बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला। जिस दिन भी उनका झूठ खुलेगा, इतना बड़ा मुल्क इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम करके अपने आप को नहीं बचा सका, तो फिर आम लोग कैसे बचा सकेंगे अपने आप को? हकीकत खुल के सामने आएगी। एक दूसरी चीज, निजाम अदल, बहुत ज्यादा निजाम अदल को कोई कमजोर नहीं कर सकता, और निजाम जुल्म ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, लिहाजा निजाम जुल्म पे भरोसा करना यह सिर्फ हिमाकत है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। एक बहुत अजीब चीज सामने आई है कि जो अभी एक वाकया सामने आया, ट्रंप पे फायरिंग का, लोग उसको हंस के ही उड़ा रहे हैं, यहां पे भी बाज़ लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई बहुत, यानी अगर तफसील में जाके उसकी तहलील करें तो आप भी सोच सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि किस तरीके से ये हो गया, कैसे वहां तक असलाह और अफराद, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं उसके पीछे कि जिस पे एनालाइज करने की और बात करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से अगर देखा जाए, रोज़ अव्वल से ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहा है ना, बहुत से बहुत आप कह सकते हैं रोज़ अव्वल नहीं, दूसरे दिन से, क्योंकि ज़्यादा पहले दिन जो स्टेटमेंट था दूसरे दिन उसको चेंज कर दिया, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। जंग जब से शुरू हुई उसके स्टेटमेंट्स तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि पिछली मरतबा खुद अमेरिका की मीडिया ने ही गिन के बताया था कि आदमी किस स्पीड से झूठ

उसको आप किससे डराएंगे? डराया उससे जाता है जब इंसान को कोई चीज़ अजीज हो, जान अजीज है, छीन लेंगे डर जाएगा। वो जिसके लिए अजीज ही नहीं उसको आप क्या डराएंगे? वो तो खुद देने को तैयार है। जिस चीज़ को आप छीनने की बात कर रहे हैं वो तो खुद देने को तैयार है, तो आप डराएंगे किससे? ये एक वाकई तौहीद और तौहीदी निज़ाम और उसके इस्तेहकाम की वाज़ेह दलील है। आखिर में बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं पालने वाले हम सब को आमाले सालिहा की तौफीक बदला, आमाले कबीहा से महफूज रखे, पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श दे, बदला हमारे मरहूमीन को बख्श दे, पालने वाले इस्लाम और मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, बदला दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद कर, पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी, बदला रहबर व मराजे को तूल उम्र इनायत फरमा, पालने वाले हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शरीक होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد।